नेशनल प्रशासन ने प्राथमिक पार्टी के पूर्ण आकार को बजट आज सार्वजनिक होने लगे प्रसंग अनावश्यक खर्च कटौती निजी क्षेत्र को प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को परिपालन सहित सुशासन केन्द्र बढ़ाते सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट आज सार्वजनिक करते डॉक्टर सुरेन्द्र वाघेली संसद को संयुक्त सदन में अपराह 4 बजे

अच्छा दूसरा ये कि जो है कि हम लोग 10 जिलहिज्जा से लेकर के 12 जिलहिज्जा तक मनाते हैं, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।

करी संतुलित खाना खाई व्यायाम शांत करी धूमपान मंदिर से दूर रही तना भला नियंत्रण करी आज निर्णय कार्य जीवन अतरा मुसलमान रोग से बांटी स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: चलेगा वह अठानवी साल का फैसला है। विश्वभर का रोटी रेफरेंस एवं पार्टनर क्लब बने द्वारा यही सलाह की प्रस्तुत संदेश
1: आदिवासी नियंत्रण तथा डिविजन फंड कार्यालय के प्रभारी

सक्दिनँ। स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्या देखियो सन्तान ग्रह छोड स्वस्थ जीवन पाँच सरकार विज्ञापन हो।

0: केटाकेटी साग सब्जी फलफुल सहित पसल पूरक खानाले बच्चाहरूलाई पकाए पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म किसान पार्क जारी छ।
1: रेडियो पूर्व एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनहित प्रचारी सन्देश।
2: नमस्कार, मेरो नाम रविन्द्र चौधरी, मास्क्री नगरपालिका वडा नम्बर चार प्रथापन बर्दिया। म प्रकृति जडीबुटी उद्योग स्नातक थुप्रै किसिमका अवसर गर्न पर्छु। हाम्रो यो प्रकृति जडीबुटी उद्योगबाट खानेहरूले ग्यास्ट्रिक अवसर क्यान्सर कपासी सुन्दर जन्ती स्मृत

मलाई एक प्रश्न आता है, होता है वस्त्र जिन्हें मलाई आस्था में बात।

0: स्वास्थ्य भी बढ़ दिया। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी मेरे स्वास्थ्य सेवा सर्वस्वा रूप में टिकी यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल करना कौशल्य अस्पताल भास्करी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल सेवा
0: चौबीसों घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैदा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा

0: साल फिजियोथेरापी तथा एक उपचार थेरापी से सफल उपचार कर
1: एम्बुलेंस का व्यवस्था कसाय महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया पुरानी पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी।

अहिलेको युगमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौ। लामो समयदेखि थापिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनसंरचना सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन प्रसारण वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्नेछ। विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण शुरू नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी सभाका विद्युत आयोजनाको तत्काल पिटिए गर्नेछौ। सुखायाममा घटाघटमा विद्युत खरिद गर्ने धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेछ। प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत चार्ज लिई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत गर्नेछौ। जल विद्युत आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान मापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नेछौ। ठुला तथा जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रबन्धकले 7% रकम जलाशयुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै 40% शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिनेछौ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वृद्धिको उत्तम सम्भावना भएका ग्रामीण एवं सहरोन्मुख क्षेत्रको चतुर्दिक प्रादेशिक विकासमा लगानी बढाउँदैछौ। यस्ता क्षेत्रलाई ग्रोथपूर्ण र पुवारका रूपमा विकसित गर्न नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेछौ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट सिंचित हुने 1,22,000 हेक्टर कमान क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै लाकी र पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्य मधेस चतुर्भुजका ग्राङ्गल बनाइनेछ। मध्य पहाड़ी पुष्कला लोकमार्ग कर्णाली राजमार्ग फेरी कोरिडोर र नारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुन्डो सम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी जलविद्युत पर्यटन र खानी जन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको भूपल नारायणघाट खण्ड र मुगलिन बमौली पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्नेछौ। सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपान्तरण शुरू गरी काली गण्डकी सभ्यताको उद्योग क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्योग व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुज बनाउनेछौ। क्षेत्र कागबेनी मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै शालिग्राम प्लस विकास गर्नेछ। लुम्बिनी मुक्तिनाथ धार्मिक सांस्कृतिक मार्गमा आधारित निर्माण पथ प्रवर्तन गर्दै ध्यान साधना योग बौद्ध वैदिक दर्शन तथा मनाङ स्थानको म्याग्नेको हिमालय सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गर्नेछ। मध्य पहाडी राजमार्गसँग लोमाञ्चुङकोला किमाथाङका तातोपाली असुवागढी कोडला हिल्सा जस्ता उत्तरी पर्या व्यापारिक गन्तव्यहरूसँग जोड्ने र लक्ष्य राखेका छौ। कोशी टक्कुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको क्षेत्रलाई समेटि जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित कोशी कोरिडोरको योजना अगाडि बढाउनेछौ। रामा रोशन खप्पर बैमालिका शैलेश्वरी उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समिति सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय चतुर्दिक विकास अगाडि बढाउनेछ। मिशन काठमाडौँ 2040 दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन शुरू गर्नेछौ। काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र शहरी सेवा व्यवस्थापनका लागि अन्डरपास फ्लाइओभर इन्टरसेक्सन सुधार नदी कोरिडोरको पूर्वाधार पार्क निर्माण फोहोर मैला व्यवस्थापन युटिलिटी डक्ट विद्युतीय तार भूमिगत सहितको एकीकृत पूर्वाधार बनाउनेछौ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सहकार्यमा वित्तीय प्रोत्साहन सहित खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि विशेष पहल गर्नेछौ। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन चार्जिङ स्टेशन ट्र्याकिङ प्रणाली स्मार्ट बस्तार सुदृढ संस्थागत व्यवस्था सहितको स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम छिट्टै शुरू हुनेछ। पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न ई मोबिलिटी सेवा शुरूआत गर्नेछ। कृषिता वर्ष 2085 अनुसार आरोग्य वर्ष 2027 सफल बनाउन सरल तयारी गर्दैछौ। उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिजोर्ट र होटल निर्माणका संचालनलाई भौतिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन गतिविधिहरूलाई आरोग्य पर्यटनको मूल विषयवस्तुमा ब्रान्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मूलहरूमा विविधीकरण गरिनेछ। नेपाललाई युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी नियामक र संचालकको पृथक भूमिका स्थापित गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान सरकारको
शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको छ। कृषि उत्पादन प्रशोधन वितरण रोजगारीकरणको सम्पूर्ण एकोसिस्टममा सुधार गर्नेछौँ। यहाँ व्यवसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। न्यूनतम 2 करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले 40% प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पायलट कार्यक्रमको तयारी गरेको छ। उत्पादन शुरू भएको मितिबाट लगातार 4 वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक 10% गर्ने सो भर्ना हुनेछ। वास्तविक कृषकलाई उन्नत बिउ मल सिंचाई विद्युत तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउने कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्नेछौँ। कृषि र पशु बिमामा 80% प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउने योजनाले दिशा तय गरेको छु। ठुला र व्यवहारधीन सिंचाई आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु। देशभर साना तथा मझौला सिंचाई आयोजना विस्तार गर्न र सरकारको लगानीमा च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौ। किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण ब्याज अनुदान जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छु। दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्ग्यानिक उच्च मूल्य र बौद्धिक सम्पत्तियुक्त जीआई वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछौ। कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनः संरचना गर्नेछौँ। वर्षै पनि कृषि प्राविधिक सेवा डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायक मार्फत कृषकको उपलब्धमै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नेछौँ। देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत विकास स्थानीय आवाजी अनुकूलको जात कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दा किसान र क्रेता बीच करार अनुदान तथा नियम सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक 64 शीघ्र पेश गर्नेछौँ। वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकरण रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउनेछौँ। दिगो काठ उत्पादन वनमा आधारित उद्योग जडीबुटी तथा गरिब काश्र वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्धन गर्नेछौँ। स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गर्नेछौ। वन पैदावारको कटानी संकलन वायु र बिक्री वितरण सम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियाको झन्झट हटाउनेछौ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन प्रशोधन ब्रान्डिङ र उद्योग सञ्चालनमा थप सहायकता प्रदान गर्नेछ। वन वातावरण उद्योग ऊर्जा र पूर्वाधार सम्बन्धी कानून तथा नीति बीचको असङ्गति हटाउनेछौ। वन क्षेत्रको कार्बन स्टक एकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गर्नेछौ। लगानी एक्सप्रेसको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी 3 महिनाभित्र स्वचालित रूप प्रणाली लागू गर्नेछौ। कम्पनी र उद्योगहरूका वित्तीय सेवा कर प्रणालीमा सहभागिता भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति अनुपात पालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षणले व्यवस्था गर्नेछौ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कारणले व्यवस्था गर्नेछौ। स्वीकृत परियोजनाको लगानी सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउनेछौ। सेवा स्थानान्तरण कर चुक्ता सम्पत्ति मूल्याङ्कन ऋण भुक्तानी लाभांश वितरण र लिक्विडेसन प्रक्रिया सरल गराई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाउनेछौ। उद्योग र औद्योगिक प्रवर्तनमा सरकार तत्पचित रहनेछ। गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अनुरूप मूर्तिपूर्ण भयो धाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन्। 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनेछन्। महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर अनुसार आयात निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थोरबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। उत्पादन र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पनि पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्नेछन्। पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग र व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्नेछौ। नव उद्यम
ස්ටාර්ට්අප් නමුත් ප්‍රබලතම උද්‍යමශීලතාවය ආර්ථික රූපාන්තරයට බලපාන ආකාරය නමුත් කියන්නේ පරිත්‍රාණ සී බજાર මැදියේ පොමසන උපරිමයේ නැසා ආවද්ද කොරසෝනියත් සාර්ථක වෙන්න ප්‍රාථමික පොහොච් ඉස්සෙල්ලා තවපා තුනියම කියන සමාජික කරන මාතෘකාව නමුත් සසාර ප්‍රාණයේ සුදුරතාවයසම් නමුත් දෙතපොසනයිකව ප්‍රේම ආධාරිත මුදල් වසනිට ලකි ප්‍රාරම්භික චරණ අනුදාන සමාජගත ප්‍රමාණික උද්‍යම කරගේ සුලියත් පොතකට තථා විස්තර චරණ ডিপোজিট ব্যবস্থা করে বিশাপি নিজি ক্ষেত্রের অধরে আবশ্যক পরিপূর সহর গঠনে প্রসারিত করেছে বিজ্ঞান প্রবৃদ্ধি অনুসন্ধান ও নব প্রবর্তন আদি পুঁজিগত খরচ ন্যূনতম 1% কন্টিনিউসের করে কিছু টেকনিক্যাল ক্রেডিট স্কোরিং প্রণালী লাগু করতে পিয়ার টু পিয়ার পি টু পি লেন্ডার তাই নিয়মন সহিত সঞ্চালন করেছে কৃষি উদ্যোগ পর্যটন মন্ত্রণালয় ছাত্র মাধ্যমকালীন স্থির ব্যবসার আকর্ষণ প্রভাব করার নীতিগত ব্যবস্থা করেছে ব্যাংকিং ছাত্রমা অর্থাৎ তথা দ্বৈর ব্যাংকিং ব্যাংকিং সম্পত্তি প্রভাব কার্যক্রম স্থাপন করা বিশেষ কানুনি অধিকার সেল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যবস্থাপন কোম্পানি পুষ্প শান্ত স্থাপন করেছে সমগ্র স্বেচ্ছিক উপশ্লমা প্রণালীগত কোন সমালোচনা করেছে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের নকশাঙ্কন পূর্বাধার অডিট শিক্ষা ক্ষমতা পরীক্ষণ এআই তথা এডটেক তৎপরতা মূল্যায়ন সমেত আধারমা নব প্রবর্তন তথা সিপ কেন্দ্রিক শিক্ষা বিস্তার করা বিদ্যালয় শিক্ষা প্রণালী প্রণালী শিক্ষা প্রণালীলাই বিদ্যালয় কেন্দ্রিক প্রণালীমা রূপান্তর করতেই স্বেচ্ছিক গুরুত্ব অভিবৃদ্ধি ও পূর্বাধার নির্মাণ অভি ভারতীয় স্বয়মুখী কার গ্রহণে নিকলিয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপন সমিতির ঘোষণা শিক্ষা সুনিশ্চিতাকে মাধ্যমে সম্পূর্ণ শৈক্ষিক সংস্থামা তথা শৌচালয় অভিযান সঞ্চালন করেছে উচ্চ শিক্ষালয় অনুসন্ধান ও প্রবর্তন জ্ঞান উৎপাদন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নির্মাণ কেন্দ্রের রূপে পুনঃসংরচনা করেছে চিকিৎসা নার্সিং সুসেবা প্রভৃতি লাগাই উচ্চ শিক্ষাকা বিভিন্ন বিধানা হাল লগাইয়ে কোটালাই চালু আর্থিক বর্ষভিত্র প্রাবকন বলে উল্লেখ্য বৃদ্ধি করেছে রাষ্ট্রীয় যোগ্যতা ঢাসা তথা পূর্বস্থায়ী মান্যতা লাভ করি প্রবাসী অনৌপচারিক তথা অর্ভবী শ্রমিক সিপাই ঔপচারিক মান্যতা দিনেছ পারিশ্রমিক সৈনিক ইন্টার্নশিপ প্রণালী সংস্থাগত করিনেছ यो बजेटले स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत खर्चको मार्गमा चलिएको छ दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति प्रयोगशाला अत्यावश्यक औषधि डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवा सहितका आधारभूत संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम बिन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौँ सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने मध्ये कम्तीमा 25 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउनेछौँ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অস্পতাল চিকিৎসা বিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও পাটন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে অন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপে বিকাশ করে বিদেশি বিদ্যার্থী সমেতলাই শিক্ষা প্রদান করার সক্ষম বানাচ্ছে সার্বজনিক সাজেদারি মডেল পাবলিক পাবলিক পার্টনারশিপ মডেল অন্তর্গত সাতটি প্রদেশের প্রমুখ সরকারি অস্পতালে সর্বোত্তম রূপে শিক্ষা অস্পতাল তথা বিশিষ্টীকৃত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রমা রূপান্তর করেছ কর্মচারী সঞ্চয় কোষ নাগরিক লগানি কোষ সামাজিক সুরক্ষা কোষ সংযোগ লগানি যোগ্য স্রোতলাই স্বাস্থ্য পূর্বাধার মেডিকেল শিক্ষা ও বিশিষ্টীকৃত সেবা বিস্তারমা পরিচালন করেছ স্বাস্থ্য বিমা কার্যক্রমকে ব্যাপক করে সংরচনা করেছ স্বয়ের রেখা সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম স্বাস্থ্য সম্বন্ধী দায়িত্বলাই একীকৃত করতে একক উপায় নীতি অপনাউনেছ স্বাস্থ্য বিভাগ সর্বব্যাপীকরণবাট আগামী 3 বছরমা 90% নেপালী স্বাস্থ্য বিভাগ দায়রামা আউনে ও ব্যক্তিগত উপচার খরচমা মূল্য কে কটৌতি হুনে অপেক্ষা রাখেক ছ রাষ্ট্রীয় ট্রমা নীতি তর্জমা করি সড়ক দুর্ঘটনা আকস্মিক ট্রমাবাট হুনে জন্ম ক্ষতি নিম্নীকরণ করনেছ আগামী 5 বছরভিতর স্মার্ট বিতরণ প্রণালীবাট 24 ঘণ্টা স্বচ্ছ পিউনে পানি সুনিশ্চিত করেছ আগামী 3 বছরভিতর 65% ও 5 বছরভিতর 100% নাগরিকলাই সুরক্ষিত স্বচ্ছ খানে পানি সেবা উপলব্ধ করাউনেছ খানেপানি আপূর্তিকে গুণস্তর শুল্ক সংরচনা তথা সেবা দায়িত্ব সুনিশ্চিত গর্ন নিয়মন প্রণালী সুদৃঢ় পাবেছ কাঠমান্ডু উপত্যকামা দীর্ঘ খানে পানি সেবা সুনিশ্চিত রাখার লাগি বিদ্যমান মসুল সংরচনাকে পুনরাবর্তন করেছ কাঠমান্ডু উপত্যকার খানেপানি ব্যবস্থাপন বোর্ড কাঠমান্ডু উপত্যকা খানেপানি লিমিটেড আয়োজনের কারণে নির্দেশনালয় খানে পানি তথা স্বচ্ছ সফাই সেবা মসুল নির্ধারণ আয়োগের আমি এটাই সংরক্ষণ করা সামাজিক সুরক্ষা প্রণালীলাই থপ নিয়ে চিত্র লক্ষ্যে বানাউনেছৌ আর্থিক রূপমা সক্ষম নাগরিকলাই সামাজিক সুরক্ষা ভত্তা স্বৈচ্ছিক রূপমা ত্যাগ্ন স্বপ্নের চরম নসক্তিলাই চরম ভঙ্গে রাষ্ট্রীয় অভিযান সঞ্চালন করেছে দেশের যোগদানলাই অন্তর পুস্তাগত ন্যায় র
राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणहरूमा सम्मान गर्नेछौँ। त्यसरी भएका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको पालन पोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपियाँ बनाएको छु। उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मुख्यत भेष कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 25 जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। श्रमिक र रोजगारबाट अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आवन्तन गर्ने व्यवस्था गर्नेछौ। यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण कृषि आतिथ्य भुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत प्राप्त संस्थालाई प्रदान गर्ने बिमा आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुनेछ। श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता न्यूनतम ज्याला बिमा कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा ब्याङ्क मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्नेछौ। कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बिमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनेछौ। पुस मशान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरण मार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन जेलमा खोजी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास हुनेछ। अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछौ। पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानी मैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि प्रगति मैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना अघि बढाई इन्ट्राडे सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध शुरूआत गर्नेछौ। सेयर कर्नरिङ इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अलाक्षित गतिविधि विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनेछौ। नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने पनि ग्लोबल डिपोजिटरी स्लिप जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै डायस्पोराको स्लिप पुँजी र सञ्चालनको सदुपयोग गर्नेछौ। प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी प्राविधिक तथा प्रशासनिक तर्फबाट तयारी गर्नेछौ।

0: लाख ऋण लेना हूँ, 3 लाख से खेल ट्यूशन हूँ, हम फोन तीनों को अपना परिवार रखा।
1: वो अपना 3 लाख रूपया ऋण ले रहा थी, 3 लाख रूपया खेता थे से लगाती ऋण लेकर कई प्रतिशत ब्याज की अपना इतना था अपना 8000 वो उससे अपना सारो ब्याज से 3 लाख रूपया से ध्यान की रखना भी
0: अगर कर्जा सरकार को पालना नहीं देखा नियम पर कर्जा नहीं देना और बहुत मना था सारा ब्याज मिला अभी

0: इनके पास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो, पेटीएम गुरुवार एवं सहकारी में जनहित में जारी संदेश।
1: आमाको दूध बच्चाको पहिलो औषधि हो, जन्मेको एक घण्टाभित्र अनिवार्य स्तरबाट सुरु गर, छ महिनासम्म आमाको दुधमा स्वस्थ बच्चा उज्यालो भविष्य।

0: जय दुखाना संध्या सभा छ बजे खुला सन्देश आत्मा स्वागत संक्रिया बिन्दु संगम कुमार उत्पादित हमारा संदेश प्रक्रिया का साथ एफएम राजापुर मार्केटा रेडियो पटिपुर एफएम कोहलपुर रेडियो खातेमारो जानकी गांव पालिका पाटो में संयुक्त संप्रसारण पीटिका हमारा संदेश का परिणामी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 का लाख 21,24,34 बजे ज्यादा बासवाड़ी बहुमुखी कैंपस में जेठ 17 गते निर्वाचन होने अध्यक्ष त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 22 सदस्य उम्मीदवार देवघर गांव पालिका चार विदर पूर्व थान सांस्कृतिक जगेरना 4,00,000 लागत में देवठान निर्माण अदालत क्षेत्र में विशेष क्षेत्र घोषणा क्रम मंत्री सांसद अनुपस्थित गणतंत्र का अपन अपमान फिलक सभामुख हटिकर टिप्पणी वो सरकारी कर्मचारी का तलब वृद्धि पूरा समाचार बिंदु से
1: नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 साल का लगभग 21,24,34,00,000 रुपया बराबर का बजट साधित करना चुनाव खर्च चालू खर्च 12,00,000 70,58,00,000 अर्थात 59.8% पूंजीगत 4,31,00,000 वापरी पूंजीगत तरफ 4,31,10,00,000 अर्थात वित्तीय व्यवस्था तरफ 4,22,24,00,000 रुपया अर्थात विनियोजन 1,00,000

साक्षी पॉइंट 8% पूंजीगत तरफों 49 से 21 करोड़ 20.3% वित्तीय व्यवस्था तरफों 49 से 22 करोड़ अर्थात 19.9% रहेको छ। यो कक्षा अनुमान चालू वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा 25% बढ़ी हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि

0: व्यक्ति सम्पन्न अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ। सो न्यून प्रतिकरमा विदेशी ऋणबाट रूपैसे ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्नेछौ। राजस्व वैदेशिक सहायता परिचालनबाट न्यून हुने ४१० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्नेछौ। आगामी आर्थिक वर्ष ₹2345 अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋणको सामान भुक्तानी हुने हुँदा खुद
1: सरकार व्यक्तिगत आय कलकत्ता सीमा पाँच लाख से बढ़ाकर दस लाख बनेगा। पहला आर्थिक वर्ष को बजेट बाट सरकार कर निरोधन पांच लाख सीमा बढ़ाकर दस लाख रूपया पुगे अर्थमंत्री सोनी करने बाट कसाई का आय कर का अधिकतम दर 10% बिंदु घटेगा। अर्थमंत्री अधिकतम ३९% आय कर लग्ने व्यवस्थामा अर्थमन्त्री सोनी मुखर्जीले मुलुकमा सुशासनको मानक स्थापित गर्न बताउनुभयो। संघीय संसदको बैठकमा आज आर्थिक वर्ष 2083/84 बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री मुखर्जीले धारणा गर्दा उहाँकोलाई नीति कानून संस्था प्रतिक्रिया नेतृत्व नियमित सुशासनको मानक स्थापित कर प्रतिबद्धता राज्य

घोषणा कर लगभग अर्थ मंत्री बबेक अनुसार सरकार का निर्माण नियंत्रण बढ़ रेल मध्य 66% सरकार का स्वामित्व में सुरक्षित कर दिए बाकी रेल ऐना बसंत विचार सर्वसाधारण सभा को खुला कर दिन आज पार्टी क्रम सरकार को स्वामित्व 91% रहना शेष बिक्री मछली संकलन मिलाकर प्रमुख कारण सूचना प्रविधि हब बनेगा लगैया महापटेरबाट संचार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सरकार अर्जुन दृष्टिल ढल्लक अर्थमन्त्री बाबुले पटेरबाट उहाँ 10 मेगावटदेखि कम क्षमतामा आयोजना तथा तरल विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए गर्न पटेरबाट आर्थिक वर्ष 2083-84 बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै उहाँ अश्विन पटेल चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नजर पर्वाही जल

0: तस्मिन् प्रतिनिधि न्यायपालिका का स्वतंत्रता निष्पक्षता तथा न्याय प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संग अदालत का स्वच्छ व निर्भीक कार्य संपादन में आकांक्षित हस्तक्षेप होना सिर्जना करना युक्ति न जना दिलवा न्याय संपादन कार्य संविधान प्रचलित कानून प्रमाण तथा विधि सम्बद्ध प्रक्रिया का आधार में होने वालों से अदालत का काम कार्य प्रभावित करना उद्देश्य कानून के बाह्य दबावमूलक गतिविधि लोकतांत्रिक विधि शासन क्रम में विपरीत होना विज्ञप्ति में उल्लेख किया। प्रदेश सभाका सभामुख प्रधान कर्तिमल गणतन्त्र दिवसका मूल समारोहमा मन्त्री तथा सांसदगणको उपस्थिति दुःखद रहेको यहीले गणतन्त्र प्रति उपमाध्यमिका स्थित प्रदेश प्रशासनिक परिसरमा आयोजित 19 गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्दै महासंघ सत्याग बलिदान से प्राप्त उपलब्धिको सम्मान व्यवहारमा उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिगण जिम्मेवारमा हर्जिकाला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिक बलिदानीमा आधारित व्यवस्थामा कोशिया संरक्षणको लागि व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक सभामुखका कार्यक्रमानुमिति प्रदेशका मुख्यमन्त्री श्री नारायण आचार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रक्षाका लागि गणतन्त्रवादी शक्ति पुनः एकजुटले बढ्नमा जोड दिएबाट गणतन्त्रमा कमजोर पर्न प्रयास मिटेर सचेत नागरिक एक ठाउँमा भइरहेकोमा मुख्यमन्त्री आचार्य पटेलबाट प्रदेश सरकार दिवसको अवसरमा सरसफाई प्रचलन तथा समारोह आयोजना गर्दा उहाँको शर्मा वैवाहिक मन्त्रालय तथा कार्यालयका कर्मचारीगण उत्कृष्ट कार्य सम्पादनका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार तथा सम्मान पत्र प्रदान दानशील ओम प्रकाश गुप्ता खबर पठाइबाट आन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पाले।
1: सरकारी कर्मचारी मृत्युदरमा करिब 21% वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री सोनिम बागले संघीय संसद आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल मिलाकर 21% वृद्धि हुना जानकारीबाट बजेट अनुसार महँगी भत्ता यथावत अति आधारभूत तलबमा 10% वृद्धि गरिएका कुराले 10% मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गरा दिनका सरकार महँगी भत्ता कायम कला निर्णय क्षेत्रमा लघु व्यवस्था अनुसार कर्मचारीका तलब न्यूनतम करिब 40,000 रूपियाँले अधिकतम 1,00,000 रूपियाँ से उठ्यार हुने व्यवस्था गरिनु बजेटमा उल्लेखित छ।
0: राष्ट्रिय समाचार सँग हाम्रो सन्देशको समय भइलागेमा हाम्रो सन्देश होइन पहिला मुख्य मुख्य सन्देश फेरि नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 21,24,34 रुपियाँ बराबरको बजेट राख्ने क्रममा सरकार कर्मचारी तलब करिब 21% वृद्धि गर्न घोषणा गर्दा नेपाली भाषा खमार सन्देशले खैरबाटी तब समग्र समाचार कक्षको सक्रिय गौरी शङ्कर क्यामेरा मानव सँग सङ्गठ्य बिन्दु कुमार रेडियो प्रभावले जय गुरुबार।

0: tu le devrais. Dans les catégories, la sortie d'un change de chance sur la salle d'études. Trois fans dans l'instrument, 60 secondes par jour. Et par 5 à la dictée à son
1: जनसत्ता मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्तर्राष्ट्रिय मौसम पूर्वानुमान अनुसार एल निनियोको प्रभावका कारण मनसुन ढिलो आउन सक्छ, बर्सात कम हुन सक्छ, लामो सुक्खा अवधि रहन सक्छ।
0: त्यसैले किसान दाजुभाइ बेटी बहिनी हो, अब पानी बचाउने धान खेती अप्नाउ।
1: धान छर्ने र रोप्ने योजना पानी अनुसार बनाऊ। सिरान मध्य र पुछा क्षेत्रमा पारे पारो रोपौ। कम पानीमा राम्रो हुने धानका जातहरू जस्तै सुक्खा धान, हर्दी धान, सामा मन्सुरी र बहुगुणी प्रयोग गरौं।
2: डिएसआर विधि, सुक्खा खेतमा धान छर्ने विधि, एसआरआई जस्ता पानी बचाउने प्रविधि अपनाऊ।
0: खेत समयाउ, पानी बलियो गराउ, धेरै पानी नजमाऊ।
1: समूहमा पानी पारौ, नहर सफा राखौ, पानीको प्रत्येक थोपा बचाउ,
2: पानी खेती गरौ।

0: Marco, the Lostavo Vista, Rana, Sakhana Prasanga, Navy Group, Iron Calcium, Ironish Dai, so a Dai Surachi Puriwar.
1: देश कोरोना के सहकारी मन स्वास्थ्य कार्यदेश मोतिया से जन सुविधा संदेश

सहकारी की अध्यक्ष अमर मस्तानी का अनुसार इस वर्ष का निबंध अंतर्गत

निहवीर जीवन खत्म हुई सत्री खाना खाई व्यायाम सब करी धूमपान मदिरा बसे दूर रही तनावना नियंत्रण करी आज निर्णय पाकी जीवन अचार निसर्ग रोग से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य कार्य में भर्ती जनहित जारी।

बाँसकरी बजार किसान सबके लगे सिद्धार्थ बैंक के तरह तुम्हें भी ले

0: आपसरी नगरपालिका पांच किसान चुक के मध्य सिद्धार्थ वैद्य तय मोबाइल नंबर 98662613 16 और 98296 83 294
1: हमारा पांच लाइन गुट्टू ज्वेलर्स के रखा था सिद्धार्थ बैंक बात करी करता रहगा नकली पांच लाइन गुट्टू ज्वेलर्स मचे खुश है रवि
2: बनवा हाटला की निरंतर तलाक डिवीजन पर कार्यालय पर अर्जी
3: बचाकर हमन हस्तांतरण कर एक अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो वनस्पति व वन्य जंतु संरक्षण ने तहत मानव जाति जीवन संभव निवेन से या कर संरक्षण में हम सब जे जुटी
2: असिन अमूल्य संपत्ति आगलागी का कारण से छेन भी बना सकता वर्ष बनना आगलागी नियंत्रण करना हमारे सबको का दायित्व कर्तव्य हो
3: आगलागी में से बनो हो कसी का बचेगा
2: हमारा सब कुछ अपन बनवा क्षेत्र में हम भी रेखा बनेगा सुखा समय अन्न से आग्रह पाकर मरम्मत संभाल से सफाई करी
3: बीवी चुरोट माथ पी कर आगे बुताई बनो में निफाटी
2: बनो भीतर बाल बने का काम नहीं करी
3: बनो में पिकनिक खाए गए से उस क्षेत्र में रह आगे मदद से बुटा के चल छोड़ी
2: सुखा मौसम में बनो में आगे लगना वस्तु सवारी लाइटर लेकर नहीं मिली
3: वन में आज लगभग देखा से लगभग वन कार्यालय सामुदायिक वन को प्रहरी खबर करी सबकुजना सुरक्षित तरीका से आगे बुताई वन विभिन्न क्षेत्र अनुसार वन में आग लगेगा आगलागी भाई जाएगा कौन फिर काम करना मैं आगलागी मशीन नुकसान विरोध बीको शुल्क 60,000 रूपया सम्म जरिमाना वा 3 वर्ष कैद वा 2 सजाय हुई सकता उन्होंने वन आग लगेगा वा आग लगी हुई सकना क्रियाकलाप नहीं करी वो अपराध में शरीर होकर सजाय भागीदार नहीं बने डिवीजन वन कार्यालय बढ़ गया फोन नंबर 084-420-156
4: टेलिभिजन फ्रिज कम्प्युटर वासिङ मेसिन माइक्रोवेभ जस्ता विद्युतीय सामग्रीमा जोडिएको तारको स्विच बन्द गर्नुपर्छ यदि विद्युत बन्द गरिएन भने चटेल पर्ने सकेसम्म उच्च
2: चटेल पर्ने जोखिम कुन कुन समयमा बढी हुन्छ